लोग हैं जिन्हें हमने नूह के बाद हलाक किया, और तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों की खबर रखने और उन पर नजर रखने के लिहाज से बहुत काफी है।

कर उन दोनों में से कोई एक तेरे पास बुढ़ापे की उम्र को पहुंचे या वो दोनों ही, तो उन्हें उफ तक ना कह और उन्हें डांट नहीं, और उन्हें नरमी और इज्जत के साथ मुखातिब कर।

0: इस नज़्म की फरमाइश की है उनका नाम मुबारका साहिबा ऑस्ट्रेलिया से कलाम हजरत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमतुल्लाह प्रोग्राम इंतखाबे सुखन
1: तैयार मशरिक के बासियों को किसी गरीबुल वतन मुसाफिर की चाहतों का

0: उन्हें अगर समझ नहीं आएगी तो वो फिर उससे आरी हो जाएंगे, वो दूर चले जाएंगे. सो बट ट्रू रिलीजन एक्चुअली इम्प्रूव्स ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इट इम्प्रूव्स विजडम एंड जजमेंट. एंड वही ना, इट एक्चुअली इन्वाइट्स यू टू थिंक मोर रैशनली एंड अंडरस्टैंड थिंग्स. ठीक है. ऑन द अदर हैंड कुरान इन्वाइट्स यू, इन्वाइट्स अस टू थिंक एंड पॉन्डर ऑन द वर्ल्ड. यू नो जमीन, कुरान कहता है कि जमीन की सैर करो, यू नो देखो कि क्या है, खुदा की नेमतों को देखो एंड सी हिज क्रिएशन. यू नो ह्यूमन रीजनिंग कैन ओनली गो एज फार एज यू नो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, वाइल डिवाइन रेवल्यूशन कम्स फ्रॉम ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल. जो इंसानी आंख है वो एक महदूद है, इंसानी जो सोच है महदूद है, लेकिन जो मजहब आता है वो खुदा की तरफ से आता है, जो कि ऑल नोइंग है, सब कुछ जानने वाला है, इन हर एक चीज पर कुदरत रखने वाला है. सो वो फिर इंसानियत को जो उसकी हद होती है उससे बाहर लेके जाए, उससे भी आगे पहुंचाता है. जस्ट लाइक इट सेज इन द होली कुरान, इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ and in the alternation of the night and day there are indeed signs for men of understanding. So the prophecies of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam continue to be fulfilled even today, showing that divine revelation is beyond ordinary human thinking. History also shows that a prophet transformed weak and divided societies into a strong and, you know, united communities. ये पीछे अगर आप गौर करके हज़रत अलैहिस्सलाम की उम्मत को छोड़ के, इस्लाम को छोड़ के, अगर आप पिछले अंबिया के भी उम्मतों को देखें, पिछले अंबिया को भी देखें, तो आप ये देखेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि लोग किस तरह फैले हुए थे, आपस में लड़ाइयाँ वगैरह चल रही होती हैं, फसाद वगैरह हो रहा होता है ज़मीन में, और लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं, आपस में क्या कहते हैं वो लड़ाई,
1: सादात पैदा
0: हो रही होते हैं, वगैरह पैदा होते हैं, तालीमात वगैरह
1: झगड़े होते हैं,
0: तो एक गुमराही में के शिकार होते हैं. तो जो
1: हर किसी के पास अलहदा अलहदा मौकफ है.
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल. तो वही जब एक नबी आता है तो फिर वो लोगों को एक साथ इकट्ठा करता है, एक कह लें कि एक कम्युनिटी बनती है. लोग मुखालफत भी करते हैं, जारी बात है, हर एक नबी की मुखालफत हुई है, तो लेकिन वो जो कम्युनिटी बनती है वो फिर उनसे आरी हो जाती है, उनसे परे हो जाती है. देखते हैं कि वो किस तरह एक तरक्की करके फिर किस तरह एक आला किस्म की कम्युनिटी बनती है,
1: बनते हैं.
0: सो इसी तरह, सो बिफोर द कमिंग ऑफ द प्रॉफिट्स पीपल वर ऑफ्टन लॉस्ट इन द मॉरल एंड स्पिरिचुअल डार्कनेस, एंड थ्रू डिवाइन गाइडेंस प्रॉफिट्स ब्रॉट यूनिटी, कंपैशन, morality and purpose. And for example, Prophet Moses stood against the mighty Pharaoh despite having no worldly power. Agar hum Hazrat Musa ki misal dekhe to unke paas to kuch nahi tha, wo to ghar se bade bhage hue the, matlab wo apne Quran Majeed mein padha hoga ki kisi ko mauka mara aur wo banda mar gaya to wo fir khauf se fir chale gaye the, chhod ke
1: chale gaye the,
0: तो किसी और जगह रहे काफी साल. फिर बाद में वो जब खुदा का हुक्म आया कि हाँ जी आपने अब तबलीग करनी है, तो उनके पास कुछ भी नहीं था, वो फिर गए. तो उन्होंने फिर एक फिरौन का मुकाबला किया, फैरो का मुकाबला किया, और किस तरह अल्लाह ताला ने उन्होंने यू नो इज्जत बख्शी, इज्जत बख्शी, और जीते भी, वो
1: मुकाम दिया.
0: हाँ बिल्कुल. सो यू नो फैरो, डिस्पाइट हैविंग नो वर्ल्ड, द प्रॉफिट मोसेस स्टूड अगेंस्ट द फैरो. And despite having no worldly things, no worldly power, yet he succeeded through God's plan. Similarly, the Holy Prophet ﷺ began with very few followers and very few resources, yet Islam spread throughout the world and beyond. And there are over 1 billion Muslims today in the world. Now, let's see the Prophet ﷺ's early life. When you said that अल्लाह ताला ने मुझे एक नबी बनाकर भेजा है, एक नबी करके मबूस किया है, तो खुदा की मुझे वही हुई है, तो लोगों ने इनकार कर दिया था. आपने पहले अपने घराने से शुरू किया, फिर आस आस से फैलाया, लोगों ने कबूल किया, ठीक है, खुदा ने मदद की, जंगें वगैरह भी हुई, तो किस तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप वो फिर तरक्की करते गए, इस जो जमात है वो बढ़ती गई, उम्मत बढ़ती गई, लोगों ने कबूल किया, और किस तरह फिर अल्लाह ताला ने उन्हें क्या आला मुकाम बख्शा. आज के दिन तकरीबन